कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या। कोई रंग तो दो मेरे चेहरे को, फिर जख्म अगर महकाओ तो क्या। जब हम ही ना महके फिर साहिब, तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या। एक आईना था सो टूट गया, अब खुद से अगर शर्माओ तो क्या। तुम आस बंधाने वाले थे, अब तुम भी हमें ठुकराओ तो क्या। दुनिया भी वही और तुम भी वही, दुनिया भी वही और तुम भी वही, फिर तुमसे आस लगाओ तो क्या। मैं तन्हा था मैं तन्हा हूं, मैं तन्हा था मैं तन्हा हूं, तुम आओ तो क्या ना आओ तो क्या। जब देखने वाला कोई नहीं, बुझ जाओ तो क्या गहनाओ तो क्या। एक वहम है ये दुनिया में अभी, कुछ खो तो क्या और पाओ तो क्या। है यूं भी जियां और यूं भी जियां, है यूं भी जियां और यूं भी जियां, जी जाओ तो क्या मर जाओ तो क्या। कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एहसन खान। आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने इंतहाई अच्छे मेजबान आबिद अली बेग के साथ। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।

ये गीत गा रहे थे आतिफ असलम। आइए आपको बताते हैं एक ऐसी चीनी खातून के बारे में जिन्हें मदर ऑफ एआई यानी मस्नूई ज़हनत की माँ कहा जाता है। ली फीफी जदीद मस्नूई ज़हनत की दुनिया में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने शोबे की बुनियादों को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि इसकी सम्त भी बदल दी। चीन में पैदा होने वाली ली फीफी कम उम्र में अमरीका मुंतकिल हुई और तालीम के मैदान में गैर मामूली सफर तय करते हुए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में डिग्री हासिल की। बाद अज़ा उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मुकम्मल की और आज वो इसी इदारे में कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर और इंसान दोस्त मस्नूई ज़हनत के मरकज की शरीक सरबराह हैं। उनकी तहकीक का बुनियादी मकसद यह है कि मस्नूई ज़हनत को इंसानी अकदार अखलाकियात और माशरती जिम्मेदारी के साथ हम आहंग किया जाए ताकि टेक्नोलॉजी इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल हो। ली फीफी का सबसे बड़ा और इनकलाबी कारनामा इमेज नेट है, एक ऐसा तस्वीरी जखीरा जिसने कंप्यूटर को पहली बार इंसानों की तरह अशिया पहचानने की सलाहियत दी। लाखों तस्वीर पर मुश्तमिल इस मंसूबे ने 2012 के बाद मस्नूई ज़हनत में आने वाले इनकलाब की बुनियाद रखी। जदीद कंप्यूटर वर्जन, खुदकार गाड़ियाँ, तिब्बी तशखीस के निज़ाम, समाजी रबतों की वेबगाहें और रोबोटिक्स सब की तरक्की में इमेज नेट बुनियादी सुतून साबित हुआ। लीफीफी ने गूगल में भी अहम किरदार अदा किया जहां वो क्लाउड्स पर मबनी मस्नूई ज़हनत के शोबे की सरबराह रही और बड़े पैमाने पर इस टेक्नोलॉजी को अमरी दुनिया में काबिल इस्तेमाल बनाने में मदद की। उनकी शोहरत और असरंगेजी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हाल ही में मारूफ चिपसाज इदारे AMD ने ऐलान किया है कि वो वर्ल्ड लेज

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका अदील बरकी। आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने मनचाहे मेजबान आबिद अली बेग के साथ।

दिल से गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा काली जुल्फें नागन बन कर देती हैं जिसपे पहरा झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा।

हसी मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं अता पता

आंखों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।